अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हृदय कमाए संत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे फिराए संत मलेच मल पाप खाए अशांत निंदक करे पा नानक नीच कहे मिटा मारे न जावा एक जो तुम पावे सही सही कर।

अंतर जाति जग मरना सब तेरे बनाई होए बिन गुरजी के बंदा होए स्वस्थ आसानी ब्रह्मा सत सुहान सदा मुस्कान।

खाला जी खाला है नदिया से बाहर सोमना जान समुद्र चाहिए अंत न सुनी कहना अंत न करना देना अंत न देखना।

निस्तार निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैवम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच।

जिन रचाई। रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी, माया जिन उपाई। कर कर देखा कीता अपना, ज्यों तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साहा पत साहेब, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कोए, के वड़ वड्डा डीठा होए। कीमत पाए न कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए।

कहाउ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद विण सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिलै नाही ठाकर हाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जैस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलियह दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचा नाए रहाओ, साचे नाम की तिल वड्याई। आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे। वड्डा ना होवै घाट ना जाए, ना ओह मरै ना होवै सोग। देंदा रहै ना चूकै भोग, गुण एहो होर नाही कोए। ना को होआ ना को होए, जेवड आप तेवड तेरी दात। जिन दिन करकै कीती रात, खसम विसार है ते कम जात। नानक नावै बाज सनात, राग गुजरी महला चौथा। हर के जान सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर सरणाई, कर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपतासा है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस, नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवै उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मैं जंत उपाए। ताका रिजक आगै कर तरया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सुतरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पछ बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मैं सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल साध बल जाइया, तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आशा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन। हर अगम अगम अपारा, सब त्यावै सब त्यावै तुद जी। हर सच्चे सिरजन हारा, सब जी तुम्हारे जी। तू जिया का दातारा, हर त्यावह संतो जी। सब दुख विसारण हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी। क्या नानक जंत विचारा,
तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुख वासी से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करै हर पूजा जी तप तापै जपै बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत सासत जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावै मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई जो तौ पावै सोई थीसी जो तू देह सोई हों पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा करै तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल जिसनु तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखै जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ै पहिले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूड़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हौ जति सती नहीं पढ़िया

रंक भयो राव कही पूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दोष्ट दुख तो हवाय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए है, ताके काल निकट नह आए है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट।

हशवाय सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम

जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित राख उर तारो। तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा।

पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे पौ जल बिखम अस गाहो गुर सबदी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाए। सब सहनो कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जे आवै तुदे आहे। सलोक महला पंजवा अंत।

सदा ही महाराज का शुक्र करिए, सदा मन लगे जाना लगे कोशिश करिए, उदा नाम साड़ी रसना थे वसदा रहे, उदे नाम विच ही सारिया बरकतां ने, उदे नाम विच ही सारे सुख ने, उदे नाम नाल ही खादा पीता पहनिया प्रवान हो जाता है, उदे नाम नाल ही घर विच सुख शांति बन जाती है, उदे नाम लिया महाराज कहते ने जीवन यात्रा ही सफली हो जाती है। ईहा खाट चलो हरदा आगे बसन सुहेला। सच्चे पातशाह जी ने कैसी खेड रचाई है, कुदरत दियां कैसियां खेडां ने, कहते ने बस ट्रांसफर करी जाना है, उस रूह नू चक के उस बॉडी शरीर बदली जाता है। कहते ने जिन्हां ने नाम जपया मनुखी देही विच बह के, फिर उन्होंने अगला समा भी अगला शरीर भी अगली जगह भी सतगुरां दे चरणां वाली मिलती है। कोशिश करिए, एक एक स्वास बड़ा कीमती है, भांडे विचों इस मिट्टी दे भांडे विचों एक एक स्वास इंज कह लो लीक हो रहा है, कटदा जा रहा है। इन्हां नू कर्मा वालियां रूहां संभाल लैंदियां हन। इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस्त ओह अपनी लहे, सच्चे पातशाह तेरे नाम नाल सुखमई नाल समा बीत जाए, ये भी तुहाडी नजर मेहरामत दी निशानी है। जिहड़ी जिसकी जिंदगी सहज चल रही है, तुरिया ही जा रहा है, अज दा जमाना ऐसा है पानी दे वांगू वहिंदा ही जा रहा है, कहिंदे ये भी नजर है भई सही सलामत तू वह रहा है तुरी जा रहा है। सो जिंदगी चलती का नाम जिवें गाड़ी कहने ना आपां, चलती रहे पर नाल नाल परमात्मा दी याद बनी रहे, मन दा चैन सुकून घर विच सुख लो लंगर तपदे रहन, आया जीरा जी जाए जीवन सुखमई बीत जाए। भुल चुक दी खिमा आओ ज्ञानी लखविंदर सिंह जी, बड़े गुरु दे साजे हुए निवाजे हुए सन्मान सत्कारयोग गुरमुख प्यारे हन, वो बड़े सुचजे ढंग नाल साडियां झोलियां महाराज दे गुरमत विचारां नाल भरदे ने, हुण वी भरनगे। उन्हां नूं जी आयां नूं फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

बाद पिसमाद राग रागुण गुण गावे सुन समाद अगाद साध संगत सपरंपर अब गत अलख अपे।

भांत अनेक विचार विचारा और जहान निदान कछ नहीं, ऐ सुबहान तू ही सिरदारा। हर की वडियाई हो आख ना सका, हो मूर्ख मुगदनी जान, जन नानक को हर बख्श।

कोई नाम न जाने मेरा। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ नित्य आवै धाए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। हे गरीब नवाज सच्चे पिता धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी ने कृपा कीती आ दाता जी अमृत वेले तो लै करके इस वेले तक। आप जी ने अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके दर्शन दे दारे बख्शे ने। सतगुरु आप जी का कोटि कोटान शुकराना धनवाद है जी। इस वेले दीवाना की समाप्ति हुई है। आप जी के सुख आसन की सेवा सोहला साहब जी के पाठ किए ने। आप जी के दरकर दे टहलियां पासों सेवावां निभाउंदियां होईयां भुलां बख्श देनियां जी। कृपा करो अपने सुख आसन स्थाना विखे चल के विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। रात सुख शांति नाल बतीत करनी जी। अमृत वेले फिर संगतां नूं दर्शन दे दारे बख्शिश करने। सही प्यारे मिलने जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

वै नमः अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ कल कलेश तन माहे मिटावौ सिमरौ जास विसंबर एकै नाम जपत अगणत अनेकै वेद पुराण सिमरत सुदाख्यर कीने राम नाम एको आख्यर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एकै दर्श तुहारो नानक उन संग मुहे उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछु बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न सताबै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निधान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला से सिमरह जिन आप सिमराए नानक ताकै लागौ पाए प्रभ कै सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किश सूझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूरन आशा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरै से धनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरै से जन प्रवान प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगर वाला प्रभ को सिमरै से पारो पुकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलहारी प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे संत कृपा ते अन दिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभ कै सिमरन कबु हुन झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निहचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद झुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जिन कौ प्रभ माया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीचौ कुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की ओ सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलूक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई जय महाभयान दूत जम दलै तय केवल नाम संग तेरा चलै जह मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहु मन मेरे नानक पावो सुख तनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंध ना परै हर का नाम जपत निसतरै अनक माया रंग तिख ना बुझावै हर का नाम जपत आघावै जिह मार्ग इह जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ते आईय नानक गुरमुख परम गत पाईय
छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तय पार पराही। अनक बिघन जय आये सुंगार, हर का नाम तत्काल उधार। अनेक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे बिसराम। हौ मैला मल कबहु न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जप हो मन रंग, नानक पाइय साध कै संग। जेह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जेह पैंडा महा अंध गुबारा, हर का नाम संग ऊजियारा। जहा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पशानू। जह महा भयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहा त्रिखा मन तुझ आकर्ष है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन बिसराम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उधरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हरे नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बबेकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जापत कब परे ना भंग। हर का नाम जन की वडयाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत काश नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ऊट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। पोत पोत जन हर रस राते, सुन सुमाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात इहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिदवसै, संत प्रताप दुरत सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कश अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमरती, पेखे सर्ब टडोल। पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मधे फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमय कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड प्रथमी फिरै, चिर जीवे महा उदास। तपीसर थीवै अगन माहे होमत प्राण। कनक अशव है गर भूम दान, नेवली कर्म करे बहु आसन। जैन मार्ग संयम अत साधन, निमुख निमुख कर शरीर कटावै। तौ पी होमै मैल न जावै, हर के नाम सम सरकश नाहे। नानक गुर मुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन स अर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहु न बिखिया टरै। जल धोवै बहु देह अनीत, सुध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहमूच। बहुत स्याण बजम का भव व्यापै, अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै। छूट सुनाही ऊभ पयाल, मुहे व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै। जे को आपु ना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय साध गावै। जे को आपु नी सो बालोरै, साध संग ए होमै शोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणी परै। जिस जन को प्रभ दर्स प्यासा, नानक ताकै बाल बाल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिय सब ते ऊंचा।
ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ, ਨਿਰਤਨ ਕਉ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ, ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ, ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਹੁ ਦੇਵ ਅਵਦਾਨ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਨੋ ਆਪੇ, ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ, ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜਾਨ ਸੁਕੋਏ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਜੀ ਸਦਾ, ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ, ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉਤਮ ਥਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਘਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣੀ ਅਰ ਅਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ।

प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हरस पावे बिरला कोए। जिंचा ख्या से जन त्रिपताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुपर परे प्रेम रस रंग, उपजय चाओ साध कै संग। परे सरनान सब त्याग, अंतर पर घासन दिन निवलाग। बड़ पागी जप्या प्रभ सोए, नानक नाम ते सुख होए। सेवकी मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक किन्नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख प्रम गया। इच्छ पुन्नी शरदा सब पूरी, रव रहे आ सत्संग हजूरी। जिसका साथ इन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाये।

लाल आखे सुख बिसरे ज बिकते काढ़े जन्म जन्म का टूटा गाढ़े गुरपुरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरह नाम जपावहो भगत पाए तरिय संसार बिन भगती तन होसी चार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम।

सर्गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब कार्य हो कछना दृष्टि तापा पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सो कहो किसे व्यापत जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेले आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रब केवल तनी तब बंद मुकत कहो किसको गणी जब एक हरगम पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए

हर अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आप हे का विस्थार जातिस पावे तत् सृष्टु पाए अपने पाणे लय समाए तुम ते

0: थक पाहे जुगां जुगांतर खाही खाहे।
1: हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विदसै वे परवाहो।
0: साचा साहिब साच नाए पाख्या।

0: चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता,
1: चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने,
0: चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती,
1: चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले,
0: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे,
1: चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने,
0: चाचरी चांदना सत्य।

0: आड़े गडान के तोड़न हार सुबात नहीं चक चार लवैया।
1: साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया।
0: दानव देव फनिंद निशाचर भूत भविख भवान जपेंगे।
1: जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थापथ पेंगे।
0: उन पर तापन बाढ़ जैत तुन पापन।

0: अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कही पूपा
1: खंडर जे रस से तज कीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी
0: कौ फूर राजा हवा बैठा कौ सिमट प्यो शंकर अकेठा
1: सगरी सृष्ट दिखाय चंपो आद जुगाद स्वरूप स्वयं पो
0: अब रचा मेरी तुम करो सिख वार असिख संगर।

0: कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सबराता
1: किल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छह करता
0: श्री तुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला
1: मन बांचत फल पावे सोई दुख न तिसे ब्यापत कोई अडिल
0: सुने गुंग जो जाए सो रसना पावे सुने मूर्चत लाए चतर

0: रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
1: सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया
0: राग रतन परवार परिया शब्द गावन आ

0: तोड़ नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया
1: पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया
0: जी जन सतुद उपाय एक वेख परसन आया
1: लब लोभ अहंकार चुका सत गुरु भला पाया
0: कह नानक जिसनु आप चुठा तिन अमृत गुरते पाया
1: भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी विखम मार्ग चलना
0: लब लोभ अहंकार तृष्णा बहुत नाही।

0: योग जगरना सो करया महला दूजा।
1: योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्द।

तुरे पलाने पौन वे घर रंगी हरमस वारिया पुठे मंडप माणिया लाए बैठे कर पसारिया चीज कर मन भाव दे हर बुझ नाही हारिया कर फरमाइश खाया वेख मैलत मरण विसारिया जरियाई जोगन हारिया जरियाई।

गुरुग्रीवने आज अंतर्जा में सतगुर जी तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जागदी छोत हाजर हाज कल युग दे बोइत आप जी दर दे हाजिर कर दे हम बेअंत गुरसिख माई भाई आप जी दी बाणी दे सत्कार जो बेअंत माया बेटा कर दे आप जी सारण सिखी दान प्रसादान जन्ना कुन प्यार बख्शन खजाने प्रभुर ने सो आहो गुरु प्यारे साध सिंह जी कीर्तन की इनिक सेवा प्रवान करनी हुई भुला चुका की खिमा करनी आओ अगले प्रोग्राम सरण करिए सिख पंथ के विद्वान सत्कार योग ज्ञानी लखविंदर सिंह जी दमदमदास साहब वाले उन्होंने पासो अज दे श्री मुखाक दे विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरण करिए दसवरों फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बिन श्रवणा कहा कु सुनता, बिन नेत्रा कहा कु पिखै, नाम बिना नर कही न लिखै।

चास जपत पूर्ण सब काम रहाओ, जाकी दृष्ट दुख डेरा टह, अमृत नाम शीतल मन गह, अनिक भगत जाके चरण पुजारी, सगल

गड़बड़ करे कौडी रंग लाई, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार ना जी मह आवे, करत करत इव ही

तिस शरणाई सदा सुख हुए, कर कृपा जाको मिले सोई रहाओ, जाके कर्तव लखे न जाहे, जाका परवासा।

जाओ। भगत की निंदा कंध छेदावे, भगत की निंदा नरक पुंचावे, भगत की निंदा गर्भ मह गले, भगत की निंदा राज तिटले, निंदक की गत

पार ब्रह्म के भगत निर्वैर सो निस्तरै जो पूजै पैर। आद पुरख निंदक पोलाया नानक।

सगल त्या वह प्रभु गुणता सा जप जप आनंद कर है तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणता सा पैरू महला पंजवां।

साध संगत पाइये वडभागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ। बंधन मात पिता सुत बनता, बंधन कर्म धर्म हों करता, बंधन काटन हार मन वसै, तौ सुख पावै निज घर बसै। सब जाचक प्रभ देवन हारु, गुण निदान बेअंत अपारु, जिसनो कर्म कर

बिसरे चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए, रहाओ रोग दो गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन भीतर सारे, गुर भेटत मन भया आनंद, सर्व निदान नाम भगवंत, जन्म मरण की मिटी जम त्रास, साध संगत ऊंद कमल विगास, गुण गावत नहीं

सोहन पंच प्रवान सती कर्म सवे कठ खाई उठ पाए नानक गया कर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का किते पौन पानी वह संतर किते का

निस्तार निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाए अशांत पापी पाप अशांत मूर आए अशांत मलेर माल पाए अशांत

अंतर्गत जग मन लाओ सब गुण तेरे बनाई होए बिन बुद्धि के मन होए स्वस्थ आस पानी ब्रह्मा सत सुहान ब्रह्म कमन सुरेंद्र भगत कमन कमन सिद्ध कमला कमन सृष्टि मां

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच,

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वर्ग अशांत पापी पाप अशांत अनूर यार करे अशांत मलेश माल पाए अशांत निंदा।

कृता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सत्य जुगादि सत्य है भी सत्य नानक उसी सत्य।

संत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गड़बड़ संत पापी पाप असंत मूर यार संत मलेच मल पाए असंत निंद

0: अपे जाए ए थाला नी थाला है एती नदियां अपे बाह पांचों मना जान समुद्र साथ बता गिरी को बनाओने
1: अंत न सुनी कहना अंत न करने देना अंत न देखना सुनना।

खोज शब्द में राज करेगा खालसा, या की रहे ना ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे जो सरदा।

निर्भउ निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सुचे सोच न हो गई

अंत मूर्ख अंत घोर अंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत कूड़े आ रहे संत मलेच मल पाए असंत निंदा।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई

अंत मूर्ख अंत घोर अशंत चोर राम अशंत अमर कर जाए अशंत गड़बड़ हृदय माए संत पापी पाप अशंत मूड़े आर कर संत मलेच माल पाए अशंत निंद

कर्ता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी सत्य।

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गलवड संत पापी पाप असंत मूड़े आर करे संत मलेच मल पाए असंत

कृता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख काल वाए शंख पापी पाप अशंख मूर्ख आए अशंख मलेच माल पाए अशंख

कैसे कितने संतूर कितने पानी कितने पानी कितने पाप कितने सुखी नानक अंत न अंत ज्ञान अंत में ज्ञान पर चन

कृता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

अशांत मूर्ख अंत घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कल वाय संत पापी पाप अशांत मूड़े यार करे खुदाए संत मलेश मल पाए अशांत।

कृता निर्भौ निर्वै अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच।

जा शंख पाओ शंख ग्रंथ निवेश पाओ शंख योग मन कहो शंख भगत ज्ञान विचार शंख सती का संदाता शंख सूर मोह मत पास।

असंत मूर्ख अंत घोर असंत चोर राम असंत अमर करता है असंत कल वह संत पापी पाप असंत मूर यार करे संत मलेच मल पाता है असंत।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैवम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक होशी

अंत मूर्ख अंत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत काल वाए संत पापी पाप असंत मूड़े आर करे संत मलेच माल पाए असंत निंदक।

सब गुण तेरे बनाई होए, बिन गुण कीते मन होए, बस आसानी ब्रह्मा सत सुहाण तरम कमण सुवेला भगत कमण कमण सिर कमण वास कमण सृष्टि महाप्राण वेद न पाइया।

करती था कर्म था जिसके रंग करके नया कर्मी कर्मी वे विचार क्या अब जिसे सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सवे कच्छ पाई उथे पाए नानक गया कर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का।

कृता पुरुष निर्भो निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच सोचे सोच न हो गई

निष्कपट निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल व्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर यार करे सुधाए अशांत मलेश माल पाए अशांत

समुद्र साधता गिरी कुल नौनी अंत न सुनी कहना अंत न करने वेलना अंत न वेखन सुन।